आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वो ही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं जो

मकबूलियत, लैला मजनू शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

चूल्हा जला दो जी अजी खा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्यों नहीं? देखो हाँ, मायके नहीं, तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस बेबी,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: दो मिठिया गल्ला कर कुड़िए हंस के साडे नाल

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का स्टार ओल्ड इज गोल्ड का ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह मेरे गाने को एंजॉय कीजिए भाई। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने हैं।

0: सारा।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह जुड़ने वाले हमारे सरफुर भाई यानी सरफराज जी, वेलकम है आपका साउथ अफ्रीका से। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। और साथ ही साथ उनके बाद राजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा, और सर्वेश भगत जी जुड़े हैं, वेलकम है आपका भी। और ये जनदाहा वैशाली से, बिहार से, और गजानन सरोकार जी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये सभी साथियों को नमस्कार कह रहे हैं। फुलाबाग संजू भाव जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं सभी दोस्तों को। साथ ही साथ काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है काजल झक्का जी। और मोहम्मद क्या नाम, मोहम्मद रजा जी जुड़ चुके हैं भाई, वेलकम है आपका मोहम्मद। और राजू यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राजू यादव जी। लिखते हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं और प्रोग्राम से जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बी के पंथ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं गाजीपुर यूपी से। और प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। अमन सर गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग
2: सर, आपका सॉन्ग बेहद सुपर, बहुत ही सुंदर है और सर सुनने में मजा आ गया।
1: थैंक यू
2: सर, प्रोग्राम का आगाज बेहद सुपर हो रहा है।
1: थैंक यू सो मच।

0: अगला मतलब जो जुड़े हुए हैं दोस्त एक माह इनका साथ छूट रहा था, एक बार फिर से इनका इनका मैं लेता हूँ।
1: इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। अमन सर गुड इवनिंग सर, आपका सॉन्ग बेहद सुपर, बहुत ही सुंदर है और सर सुनने में मज़ा आ गया। सर प्रोग्राम का आगाज बेहद सुपर हो रहा है।
0: थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ जुड़ी है सुनीता गोप जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनीता गोप जी, सराय किला झारखंड से। और समुंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर जी आपका भी। साथ ही साथ हमारे प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अशोक देशमुख जी। अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं हरिद्वार वाले, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और खुशबू कुमारी जी बहुत बहुत वेलकम है, शुभ संध्या नमस्ते आपको भी, और बहुत बहुत वेलकम है। रवि जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है रवि जी। साथ ही साथ हमारे सरोजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और इसहाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम वेलकम है। तो सबसे पहले जो मैं गाने प्ले करने वाला हूँ इसहाक हुसैन जी का ही करने वाला हूँ, क्योंकि आप आए बाहर आई, इंजॉय द ट्रैक।

0: दिल बहलता है मेरा आप सबके आ जाने से, और आप आते हैं तो बाहर आ जाती है। अमरीश जी लिखते हैं कि नहीं सर जी, देखिए ऐसा नहीं होता है, आपका गाना वैसे भी मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि आज आपका गाना ओल्ड इज गोल्ड वाला नहीं था, तो इसलिए ओल्ड इज गोल्ड वाले आज गाने प्ले होंगे सिर्फ, इसलिए आपका गाना नहीं प्ले होगा, मैंने कैंसिल कर दिया उसको, ये फीडबैक सुन लेता है।
1: जय अमन सर जी, सुख संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी, शाह हुसैन जी अपने गाने में शामिल किए हैं और आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और हमारे गजानन जी लिखते हैं कि आप आए बाहर आई फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, लाजवाब ये नगमा सुनने को मिला, मजा आ गया, धन्यवाद। शाह जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बेहतरीन एंड लाजवाब डिमांड। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी आप आए बाहर आई, वेलकम है आपका भी, थैंक यू सो मच। आत्माराम पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ इसी बात का अगला जो डिमांड है हमारे सामने दिख रही है, मिराज जी का सुनना चाहते हैं, आने से उसके आई बाहर, जाने से उसके जाई बाहर, सच में इंजॉय कीजिए इस गाने को। और बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, उसके आने से मेरा दिल खुश हो जाता है।

मेरी महबूबा। और आज सावन का पहला सोमवार भी है सच में। और क्या ही बताऊं मैं, आत्माराम जी लिखते हैं कि ओपनिंग गाने के साथ साथ ये जीने की राह का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ये तबीयत खुश हो गया है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम डिमांड, थैंक यू सो मच, ये क्या कहते हैं।

0: बड़ी मस्तानी है
1: मेरी महबूबा,
0: मेरी महबूबा
1: जी जी।
0: वाह जी वाह, क्या लाजवाब सॉन्ग है अमन सर जी, दिल खुश हो गया है हमारा। अनिल कुमार हरिद्वार से।
1: आपकी स्टूडियो में अजीब सी आवाज क्यों आ रही है, थोड़ा सा देखिएगा जरूर। ओके, जाकिर खान जी लिख देंगे मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए, भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और राम कुमार मिश्री जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। लिखते हैं कि आने से उसके आए बाहर और जाने से उसके जाए बाहर, ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही सुंदर गाना सुनने को मिला है और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत वेलकम है राम कुमार मिश्री जी। और प्रकाश जी क्या कहें, ये भी सुन लेते हैं।
2: गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे,

0: बिल्कुल
1: बड़ी मस्तानी है
0: मेरी महबूबा,
1: मेरी महबूबा। अमन सर मजा आ गया, जीने की राह मूवी से जो सॉन्ग सुनवाया है बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, और यहाँ पे खुशबू कुमारी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आने से उसके आए बाहर मोहम्मद रफी की आवाज में लाजवाब नगमा, वाह मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अजय भगत जी लिखते हैं कि सुपर हिट डिमांड। जी बिल्कुल, और इशाक जी लिखते हैं कि मेरा जी का भी पसंद। अच्छा ये पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड भूल गए हैं, ओके ठीक है, मैं अभी उनका पासवर्ड बनाता हूँ, उनका नंबर लिख कर भेजिए मुझे यहीं पे। और नंदलाल यादव जी जुड़ चुके, लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है सुभाष तिवारी जी का है शायद, जी बिल्कुल नहीं सॉरी अभिषेक तिवारी जी का है। अभिषेक तिवारी जी सुनना चाहते हैं फिल्म इन बैराग का ये बहुत ही प्यारा गाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इंजॉय कीजिए।

0: कोई नहीं।
1: वेलकम बैक। सच में सारे शहर में आपका कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। नाहिदा साहब जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, मजा आ गया सच में यार। और ये गाना क्या ही कहे। रणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है मुरादाबाद यूपी से, बहुत बहुत वेलकम है रणवीर सिंह जेठालाल जी। राम कुमार मिस्त्री जी लिखते हैं कि सारे शहर में आपसा कोई नहीं, और गाने के साथ जब आप गुनगुनाते हैं तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरा हौसला अफजाई किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ यहाँ पे लिखती हैं खुशबू कुमारी जी, बहुत अच्छा लगा सच में ये गाना, थैंक यू सो मच आपका भी। और अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन सर जी सारे शहर में आपका कोई नहीं, बहुत ही शानदार गाना, थैंक यू सो मच। ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: जय अमन सर जी, अभिषेक तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: वेलकम जी आपका भी। और प्रकाश जी लिखते हैं कि राम और श्याम मूवी का अच्छा सॉन्ग है सर, प्रोग्राम सुपर से ऊपर जाने वाला है। जी बिल्कुल, आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ओके, और यहाँ फूले भक्त संजू भाव जी लिखते हैं कि आने से उसके आई बाहर, किस श्रोता की फरमाइश थी, आने से उसके आई बाहर बड़ी मस्तानी मेरी महबूबा, ये यानी कि मिराज जी के एमडी मिराज जी का डिमांड था। और संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम दीदी आपका। और अशेख मोहम्मद ताहिर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, अंधेरों के बाद ही रोशनी मुस्कुराती है, न जान न हार मान ए दिल कभी राहों की मुश्किलों से, तो कभी धूप तो कहीं ठंड छांव आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कभी खुशी कभी गम आती रहती है ना। अनिल कुमार जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है अमन सर जी, सुंदरे हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी अनिल कुमार हरिद्वार वाले जी। और जाकिर खान लिखते हैं सारे शहर में आप सा कोई नहीं, लाजवाब गाना है सच में, मजा आ गया सुन के। अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं यहाँ पे पटना बिहार से, और लिखते हैं कि बैराग फिल्म का शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है काजल झक्का जी का है, काजल जी क्या सुनवाना चाहती हैं, जरा सुनते हैं ना इनकी ऑडियो को।
4: तुमसे मिलने की हर दुआ कबूल हो जाए, तुमसे मिलने की हर दुआ कबूल हो जाए, तेरी हर मुस्कान मेरी किस्मत बन जाए, तेरी हर मुस्कान मेरी किस्मत बन जाए, तू साथ हो तो हर लम्हा हसीन लगे, तू साथ हो तो हर लम्हा हसीन लगे, तेरी हर खुशी बस मेरी हर खुशी बस तेरे नाम हो जाए, मेरी हर खुशी बस तेरे नाम हो जाए। नमस्ते, गुड इवनिंग आपको रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को, नमस्ते गुड इवनिंग, मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी बिहार से, और मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग मैं भेज दे रही हूँ, और ये सॉन्ग मैं सुना दूँगी सबसे पहले अपने मिठू मियाँ जी को, अमन जी आपको, वंशिका जी को, और जितने दीवाने दीवानियाँ सुन रही हैं सभी को सुना दूँगी।
1: ओके जी, गाना तो मैं ज़रूर प्ले करने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही कहूँगा, आपसे मिलने की चाहत हमेशा रहेगी, आपसे मिलने की चाहत हमेशा रहेगी, आपको भूलकर जिंदगी ना रहेगी, आपसे हमको मोहब्बत तो तब तक रहेगी जब तक सूरज में रोशनी रहेगी, जब तक सूरज में रोशनी रहेगी। इंजॉय कीजिए इस

0: वेलकम बैक। सच में सब कहते हैं कि मैंने तेरा दिल ले लिया है और खुशबू कुमारी जी लिखती है कि काजल जी की प्यारी आवाज में शायरी बहुत अच्छी लगी और इसलिए तो मैं कहूँगा कि एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई, एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई और कभी दोस्ती थी अब मोहब्बत बन गई और कुछ इस तरह शामिल हुए आप जिंदगी में कि मुझे सोचते रहना यानी आपको सोचते रहना मेरी आदत बन गई। ओके थैंक यू सो मच। और इसी बात पर सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: जय अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए हैं उनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: वेलकम जी आपका भी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना जी बिल्कुल। और नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है काजल झा का जी का। और आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत बहुत बहुत ही शानदार गाना है ये काजल जी का, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी के पसंद बेहतरी लगी है, धन्यवाद। झक्कास मैं कहता हूँ, एक्चुअली इनका नाम है काजल झा। ओके जी। और लेकिन मैं हमेशा झक्कास कहता हूँ क्योंकि ये जब बोलती है ना झक्कास वो अच्छा लगता है, इसीलिए उनका नाम झक्कास पड़ गया है। और शेख मोहम्मद यहाँ पे ताहिर जी लिखते हैं कि परदेसिया ये सच है पिया वाला गाना बेहतरीन लगा है। थैंक यू सो मच। इसी बात पर अजय भगत जी लिखते हैं कि धमाकेदार सॉन्ग है जी, बिल्कुल धमाकेदार गाना तो है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि घर की यादों को दिल में दबाकर और परदेश में कमाते हैं और कंधों पर जिम्मेदारी लिए ये शेर बब्बर मुस्कुराते हैं। अच्छा ओके। और इसहाक जी लिखते हैं कि ठीक है इनका मुझे पासवर्ड, ठीक है मैं बताता हूँ पासवर्ड क्या है इनका। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि मिस्टर नेटवर लाल का गीत 1980 के पैदान नंबर 4 पे बजा था सर। अच्छा जी। आनंद बख्शी के बोल और राजेश रोशन का संगीत में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ कमाल की है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और राम कुमार मिस्त्री जी लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे चार मजदूर एक मिस्त्री आपके प्रोग्राम को सुनकर खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि अमन सर का अंदाज ही निराला। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। इसलिए तो बहुत जल्दी मेरा वक्त बदलने वाला है। थैंक यू सो मच आपका इसी बात पर। और हाँ, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ ये मीना जी के है, मीना कुमारी जी का बोल दो मीठे बोल सोनिए, सच में बहुत ही प्यारा गाना है ना। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास। और सबसे पहले तो मोहन वाले जी लिखते हैं सुपर हिट गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं नमस्ते, गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, वेलकम है आपका मीना इब्राहिम जी यूएसए। और साथ ही साथ प्रकाश जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल। और अजय भगत जी लिखते हैं कि सजाकर लफ्जों की महफिल जब ये गीत चला, रूह के हर एक तरह को, अच्छा एक तार को जैसे संगीत में मिला, आवाज में तेरी कोई ऐसी तस्वीर है कि सुनते ही दिल को लगा कि ये कोई खूबसूरत सा तस्वीर है। और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना। ओके थैंक यू सो मच सर जी, आपने अच्छा लिखा हुआ है। जाकिर खान जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, यानी मीना कुमारी जी आपका। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग है जी बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम पसंद है जी, थैंक यू सो मच। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि तू मेरा सपना मेरा अरमान है, लिखते हैं कि तू मेरा सपना मेरा और मेरा अरमान है, और पर शायद तू अपनी अहमियत से अनजान है, और मुझसे कभी तू रूठ मत जाना, क्योंकि मेरी दुनिया मुझमें तुझमें ही जानती है, और तुझ बिना बिल्कुल सुनसान है, और तेरी यादों का एहसास बहुत खास है, और दूर रहकर भी तू हर पल मेरे पास है। ओहो बहुत बहुत वेलकम है आपका भी मीना कुमारी जी, और अच्छा लिखती हैं आप। एमडी मेराज जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि लाजवाब गाना है जी बिल्कुल। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1984 में पैदा नंबर 13 पर बजा था सर ये गाना, आशा भोसले और सबीर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी जी के बोल और अनु मलिक के संगीत। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये गाना बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगता है। नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने को पसंद करने वाले दोस्त को। और अनिल कुमार जी क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं।
1: जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा, अच्छा बुत एक बनाऊं।
0: जी जी बना दीजिए। और ओके जी, और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर एंड मेलोडियस गाना है, बोल तो मीठे बोल सोनिया, अच्छा लगा इस गाने को सुनकर। और बीके पंच लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है सोहिनी महिवाल का बिल्कुल। और खुशबू जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका भी। और ये क्या कहते हैं इनकी भी सुन लेते हैं।
2: अमन भैया नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से, तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार प्रणाम।
0: ओके बहुत बहुत वेलकम है आपका सुनील कुमार जी। और मैं सभी दोस्तों से कहूँगा कि मैं व्हाट्सएप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अगर कोई व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर रहा है तो प्लीज़ रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से ही मैसेज करें, हर सुविधा उपलब्ध है, आप ऑडियो भी अटैच करके भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, सारा सुविधा उपलब्ध है, मैसेज करके भेज सकते हैं सब कुछ। और आने वाले दिनों में एक दो अपडेट के बाद अगर मुझे फ़ोन करना होगा तो अब मैं व्हाट्सएप से कॉल नहीं करूँगा, रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन में ही आपको कॉल आ जाएगा, आप वहाँ से रिसीव करके हमसे बातें कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये फीचर्स आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बोल दो मीठे बोल सोनिया, यानी कि व्हाट्सएप से बिल्कुल अनजान, व्हाट्सएप का इस्तेमाल होगा ही नहीं, जो होगा सो वो आपको रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन में ही सब कुछ मिल जाएगा, आप भी वहाँ पे फ़ोन रिसीव कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ, आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है, मैं यहाँ से कॉल मिलाऊंगा और आपके रेडियो पर कॉल जाएगा, आप वहाँ से कॉल रिसीव करेंगे, आपसे मेरी बातें होंगी, आपकी आवाज़ यहाँ पे दोस्तों को सुनाई देगी, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल में होता है, नो नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह वगैरह के समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फीचर्स भी बहुत पसंद आएगा। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि लम्बे बीत जाते हैं यादें छोड़कर, लम्हे बीत जाते हैं यादें छोड़कर, और वक्त गुजर जाता है रिश्ते जोड़कर, और कभी फुर्सत मिले तो पलट कर देखना, हम आज भी वहीं खड़ी हैं पुरानी राहों पर। अच्छा ये बात है। और सरिता सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सरिता सिन्हा जी। ओके अगला गाना जो है वो मैं सुना रहा हूँ हमारे सर्वजीत शेट्टी जी का, सुना चाहते हैं 18 बरस की होने को आई।

ओके, आप खुद नहीं जानती हो यानी कि सुंदरता की मुरा जी, सुनिएगा जरूर ये लाइन आपके लिए स्पेशली मैं। आप खुद नहीं जानती आप कितनी प्यारी हो, आप खुद नहीं जानती आप कितनी प्यारी हो, जान हो हमारी पर जान से भी ज्यादा प्यारी हो, और दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यानी कि कल भी हमारी थी और आज भी हमारी हो।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। और यहाँ पे मीना कुमार जी लिखते हैं, वाह भाई ये हुई ना बात, बिल्कुल ये फीचर्स बहुत जल्दी आने वाला है। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि सर्वजीत शेट्टी जी की पसंद लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और मोहन भाई लिखते हैं कि 18 वर्ष की होने को आई, बहुत ही शानदार गाना है जी, बिल्कुल। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सरजीत सिट्ठी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी इस गाने के लिए भी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत मस्त गाना है जी, बिल्कुल। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि 18 वर्ष की होने को आई, ये वाला गाना सर्वजीत शेट्टी जी के पसंद, बहुत शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और जुड़ चुके हैं हमसे शाहनवाज खान जी, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बहुत बहुत वेलकम है, आप जुड़े हैं। लिखते हैं कि आज मैं भी हल्की हल्की बारिश में ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहा हूँ, और सोहनी महिवाल का गाना बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब डिमांड थी हमारे ये मीना कुमारी जी की। और मैंने भी एक फरमाइश भेजा है, शायद आपको मिल गया होगा। आपने कहाँ भेजा है, मुझे तो दिख नहीं रहा है फिलहाल, जरा मुझे बताएंगे प्लीज़। और लिखते हैं 18 वर्ष की होने को आई भी गाना बहुत ही शानदार लगा है, लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं इसी बात पर। और बी के पंची लिखते हैं कि सर जी बेहतरीन सुपर हिट फरमाइश है, बिल्कुल। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि 1980 के पैदान नंबर 17 पर बया था, अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया हुआ शानदार गाना सुनने में मिला, मजा आ गया, बिल्कुल। ये तो सुहाग का ये गाना है ही, इतना प्यारा। और सईदा सिन्हा जी लिखते हैं कि सुहाग का

0: नया गाना सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ओके, और रणवीर सिंह जी, जेठालाल जी लिखते हैं कि 18 वर्ष की होने को आई, अमिताभ बच्चन और रेखा जी का गाना शानदार लगा है। और सुनील कुमार जी ये लिखते हैं कि सरोजी सेठी जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: अमन भाई बहुत शानदार सॉन्ग, गुड इवनिंग, सुनील पवा जी लक्ष्मीवाड़ा से, बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है रेडियो पर, क्या बात है, जबरदस्त बजाते रहो रेडियो हॉट स्टार,
0: धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है बीके पंत जी का है, सुना चाहते हैं नागन सा रूप है तेरा, सच में बहुत प्यारा हो ना, इसलिए अरे हम तो कहेंगे सुन जाता की मूर्त।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: वेलकम बैक। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बिग पंजी की पसंद सुपर सुपर सुपर। और नाही जी लिखते हैं कि बिग पंजी आपकी पसंद सुपर हिट लगी है, लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं आपको। अशोक कुमार जी लिखते हैं बगावत का लाजवाब गीत धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया हुआ शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि भाई ये पानी में आग लगा रही है, बहुत ही धमाकेदार गाना है, एकदम मजा ही आ गया। और मीना कुमार जी लिखते हैं कि नहीं आता मुझे तुमसे दूर रहकर सुकून से रहना, लिखती है कि नहीं आता मुझे तुमसे दूर रहकर सुकून से रहना, हर पल तुम्हें देखने की ख्वाहिश है मेरी, और प्यार वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, और प्यार तो वो है जो जो तुझे किसी और का ना होने दे। अच्छा ये बात है। फिलहाल यहाँ पे मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि अर्जमन जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ पे सईदा सिन्हा जी लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज में लाजवाब गाना, मजा आ गया। बीके पंजी लिखते हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया और जो भी दोस्तों ने ब्रेक दिया बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे सुनील कुमार जी लिखते हैं, सुनील पवार जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाना है, नागन स्वरूप है तेरा, ये बिल्कुल वो तो सुंदरता की मूर्त है ना। रणवीर सिंह जी जेठालाल जी लिखते हैं कि फिल्म बगावत का गाना नागन स्वरूप है तेरा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया हुआ गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: तू पहरे लग बिठा ले, तू पर्दे लग गिरा ले,

ओके बस इतना ही है शायद। मीना जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा गाना ये लगा मुझे, और ओके थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि मीना जी आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे असलम राणा जी का है। असलम राणा जी आते हैं तो हमेशा कुछ हट कर लाते हैं, ओके इस बार भी हट कर ही उन्होंने लाया हुआ है। इंजॉय कीजिए उनके गाने को।

कोई लाल रुमाल लगाता है और कोई लंबे बाल बढ़ाता है, लड़की का मन ललचाने को कोई मोटर कार दिखाता है।

0: हो, क्या बात है, क्या बात है। असलम राणा जी छा गए और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं रेस्पेक्टेड असलम राणा जी, आपकी चॉइस सच में अल्लाह जवाब लिखनी है, बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर। ओके जी, और ये फिर से
1: जय अमन सर जी, एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी। और मोहन वाई लिखते हैं कि सुपरहिट गाना सुनने को मिला, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि रणवीर सिंह मतलब जेठालाल जी, ये यानी कि फाइव राइफल फिल्म का गाना सच में मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और सुनील पवार जी लिखते हैं कि सुपर डुपर हिट सॉन्ग है, सुनने को मिला है। और आत्मराम जी लिखते हैं वाह भाई असलम राणा जी, ओल्ड इज गोल्ड सुना दिया आपने, मजा आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं आपको इस गाने के लिए। और ओके, और यहाँ पे मीना कुमारी जी लिखते हैं कि मन करता है कि तुम्हें नज़र में बसा लूँ, अच्छा वाह क्या लाइन है आपकी, मन करता है कि तुम्हें नज़र में बसा लूँ और इन और औरों की नज़रों से तुम्हें बचा लूँ, और कहीं चुरा ना ले तुम्हें मुझसे कोई, आओ तुम्हें अपनी धड़कन में छुपा लूँ। हाय क्या बात है, क्या लाइन है आपकी, सच में दिल में एकदम घुस गया है आपकी लाइन इसे। और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे अशोक कुमार जी लिखते हैं कि फाइव राइफल्स का ये गीत एस जौहर पर फिल्माया हुआ शानदार गाना, सच में मजा आ गया, थैंक यू सो मच असलम राणा जी। और अर्षद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं वाओ वाओ सुपर सॉन्ग। और गजानंद जी लिखते हैं कि असलम राणा जी की पसंद बेहतरीन लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मिथिलेश पवार जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। और काजल झक्का जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, और सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जाकिर खान जी का है, जाकिर खान जी क्या सुनना चाहते हैं और सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: सच में गाना यानी खुशबू तेरे बदन में कहीं और कहीं नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही पास है। मिथिलेश पवार लिखते हैं, बहुत मजा आ रहा है आज के सभी गाने सुन सुन के। ओके, और ये क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जी अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और एस के जसवाल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि जाकिर खान जी की पसंद, रफी और लता की आवाज में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का गाना, सुपर सुपर सुपर हिट, लाजवाब। ओके, और यहाँ पे शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद का सॉन्ग दिल को छू गया, थैंक यू। लिखते हैं कि रंगत तेरी सूरत किसी में नहीं, बहुत अच्छा गीत लगा है जी।
2: मैं बस तुम्हें देखते हुए,
0: मेरी बात सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और अश्विन पवार लिखते हैं कि रिश्ता चाहे धरती पर कोई भी हो, और सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड होता है, भरोसा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अशोक कुमार लिखते हैं कि शमी को पद्म और बबीता पर फिल्माया हुआ गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। आत्माराम जी लिखते हैं जाकिर खान जी की पसंद शानदार। इसी बात पर अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक हमारे एस के जायसवाल जी हैं और साथ ही साथ ये नाम इनका सुनीता गोप जी, दोनों एक ही गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं सुनवा रहा हूँ दिल धड़क रहा है। बिल्कुल दिल धड़क रहा है, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बुझ रही है।
1: इसका ये मतलब है, अच्छा जी समझ में आ गया, मतलब गाने का मतलब ही समझ में आ गया। सरिता सिन्हा लिखती है कि तुमसे अच्छा कौन है, गाना सुनकर अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के। और मीना कुमारी लिखती है कि कुछ तो अच्छा लिखा है मेरे हाथों में, लिखती है कि कुछ तो अच्छा लिखा है मेरे इन लकीरों में। अच्छा लिखती है कि कुछ तो अच्छा लिखा है मेरे हाथों की इन लकीरों में, यूं ही जिंदगी ने मुझे तुमसे नहीं मिलाया है। और कभी तो याद आऊं तो थोड़ा सा प्यार कर लेना, मेरे दिल की हर धड़कन का एतबार कर लेना। और तुमसे दूर हूँ ये मत सोचना कि तुमसे दूर हूँ ये कितना ये मत सोचना, मेरे मिलने तक तुम थोड़ा इंतजार कर लेना, जी जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा आपकी लाइनें हैं, अच्छा लगा। मिथिलेश पवार लिखते हैं कि अमन जी आपके देखा है ऐप से मिल, अच्छा जी ये गाना अच्छा लगा, ओके ओके। और मोहन वाली लिखते हैं कि दिल धड़क रहा है, गाना की पसंद बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि मोहब्बत कोई लफ्जों का खेल नहीं, नहीं ये सिर्फ हंसी ख्वाबों का मेल, मोहब्बत तो वो खामोश एहसास है जो दूर रह के भी दिल के पास है। और तो कभी सुबह की ठंडी हवा में उसकी मिठास है, तो कभी ढलती शाम की धीमी सी प्यास है, ना शर्त कोई ना कोई हिसाब होता है, और सादे पन्नों पर लिखा कोई हसी सा ख्वाब होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्या कहते हैं,
2: दिल धड़क रहा है, बहुत ही शानदार रोमांटिक लवली सॉन्ग, लव इज लव। सुनील पवार जिला छिंदवाड़ा से सुन रहे हैं और मिथिलेश पवार भी साथ में सुन रहे हैं, हमारे मम्मा बहुत दूर हैं अभी। अच्छा। मजा भी आ रहा है, बजाते रहो रेडियो हॉटस्टार।
1: धन्यवाद देते हैं आपको। और ये हमारे रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि दिल धड़क रहा है, वाह क्या गाना है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों दोस्तों का डिमांड शानदार, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जाकिर खान लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अशोक कुमार लिखते हैं कि जितेंद्र और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया हुआ ज्योति बने ज्वाला का सुपरहिट गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया इस गाने के लिए। इसके जयसवाल जी लिखते हैं कि अमन जी गीत को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों का भी शुक्रिया गाने को पसंद करने के लिए। इसके जयसवाल ग्रेटर नोएडा। शहनवाज खान जी लिखते हैं कि यह प्रसिद्ध गीत दिल धड़क रहा है, इसका क्या सबब है, ये प्यार हो गया, इसका ये मतलब है। फिल्म ज्योति बने ज्वाला का जो 1980 में आई थी, ये जो उसकी लाइनें हैं जहाँ दिल की धड़कन का सीधा सा संबंध है वो प्यार से जोड़ा गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि आप जब लाइन पढ़ते हैं तो और उसका जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है, ओके थैंक यू सो मच। ओके जी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लाइनों का मैं जवाब दूं। और सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ वी के पंत जी लिखते हैं कि बेहतरीन प्रोग्राम और बेहतरीन गाना, थैंक यू सो मच। इशाक खान जी इशाक हुसैन जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है और होम थिएटर पर मैं लगा के बजा रहा हूँ, इसीलिए फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ, कोई बात नहीं भाईजान। और ओके फिलहाल अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ, दिल धड़क रहा है फिलहाल, दिल विल प्यार बार मैं क्या जानूं रे, ये गाना सुनना चाहते हैं हमारे राजेश कुमार जी, क्योंकि इसके बाद से वही गाना मेरे लिए यहाँ पे सुटेबल फिट हो रहा है, इसके बाद से यानी कि प्रमोद जी का गाना मैं प्ले करूँगा, फिलहाल ये गाना राजेश कुमार जी के पसंद पे।

और मीना जी की शायरी का जवाब तब तक मैं दे देता हूँ, तब तक गाना प्ले होगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई और तेरी हर बात मेरी जान बन गई। दिल ने जब से तुझे अपना माना, दिल ने जब से तुझे अपना माना, मेरी हर खुशी तेरे नाम बन गई, मेरे हर खुशी तेरे नाम बन गई। एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रमोद कुमार लिखते हैं राजेश जी की पसंद, वाह लाजवाब, बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। नाही जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल चॉइस के लिए राजेश जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और मोहन भाई लिखते हैं कि दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रहे, सब भेड़ गा रहे हैं, धन्यवाद इस गाने के लिए भी। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि मोहब्बत के सभी रंग बहुत खूबसूरत हैं, लिखती है कि मोहब्बत के सभी रंग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत तो वो रंग है जिसमें तुम हो बस तुम हो, और प्यार की रूह में गजल की तरह, और प्यार की रूह में गजल की तरह, रूप की झील में कमल की तरह, और तुम जो होते हो साथ मेरे दिन बीत जाता है एक हर एक इनके पल की तरह। और इसलिए तो मैं कहूँगा कि मोहब्बत का कुछ रंग ऐसा चढ़ा, यानी सुनिएगा कि मोहब्बत का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि हर सपना तुझसे जुड़ गया, अब दिल की हर धड़कन कहती है कि तू ही मेरा पहला और आखिरी प्यार बन गया। ओके, मेरे पास और भी फीडबैक है जो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि प्रोग्राम से मैं भी जुड़ गया हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, नमस्कार वेलकम है आपका भी। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, दिल विल प्यार वार मैं क्या जानूं। शहनवाज खान जी लिखते हैं कि शागिर्द फिल्म का लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। ओके, और यहाँ अशोक कुमार लिखते हैं कि फिल्म शागिर्द का ये सुपरहिट गीत 1968 की टॉप पायदान नंबर एक पर बजा था, लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने दिया था। ओह थैंक यू सो मच इतना जानकारी के लिए। और खुशबू जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना। और गजानन जी लिखते हैं कि दिल विल प्यार वार मैं क्या जानूंगे, शागिर्द फिल्म का गाना शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। सजिता सिन्हा लिखते हैं कि शायरा बानो पे फिल्माया हुआ गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सुन के इस गाने को। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं आरजामन जी मैं भी जुड़ा हूँ और जी वेलकम है आपका। और संतोष गौंड जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है, बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रे। इसके जयसवाल जी लिखते हैं कि अमन जी ये गीत भी बड़ा लाजवाब है, जी बिल्कुल। और राजेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले करे, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं प्रमोद जी का गाना अभी प्ले करने वाला हूँ, उनकी डिमांड है और ये डिमांड बहुत ही प्यारा है, मैं पहली बार सुनने वाला हूँ शायद। इन्जॉय द ट्रैक प्रमोद कुमार जी।

0: भाई प्रमोद जी की पसंद बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हरजी अमन सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: वेलकम जी आपका। और ओके, और यहाँ पे मोहन हमारे जी लिखते हैं कि सुपरहिट डिमांड के लिए थैंक यू सो मच भाई प्रमोद जी। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त प्रमोद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और सीता सिन्हा लिखते हैं कि इंसान फिल्म का शानदार गाना पहली बार सुनने को मिल रहा है जी, मैंने भी पहली बार ही सुना है। और जाकिर खान लिखते हैं कि जब से देखा है तुमको सुपर ओल्ड इज गोल्ड पसंद है। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ सुनील कुमार जी का, तेरे दिल की तू जाने मैं अपने दिल की जाने, मैं बस मैं तुम पे मरता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ।

एक्टर कृष्ण मूर्ति के और फिल्म का नाम है नाम यस। वैसे फीडबैक बहुत रहे राधा कृष्ण को देखते हैं कि इस शानदार नगमे के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये तेरे दिल की तू जाने लाजवाब डिमांड है और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि एक चेहरा दिल में बस जाए, एक चेहरा दिल में बस जाए तो फिर लाखों हंसी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस तरह से हम सुकून को महफूज कर लेते हैं। जब भी तनाव होते हैं तो तुम्हें महसूस कर लेते हैं और कोई पूछे तो भी तेरे किस्से बयान नहीं करते हैं कि अगर कोई पूछे तो तेरे किस्से बयान नहीं करते हैं। हम अपने दिल की बातें यहाँ वहाँ नहीं करते हैं। ओके और लिखते हैं कि थैंक यू मोहन निवारे सर जी और ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। ओके तो मोहन निवारे जी का गाना नहीं था, ये किसी और का था, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि चांद भी तेरी खूबसूरती से शर्माता है, कि चांद भी तेरी खूबसूरती से शर्माता है और सितारों का नूर भी फीका पड़ जाता है जब तुम मुस्कुरा कर देखती है ना मुझे, मेरा पूरा जहां महक जाता है। वैसे यहाँ पे फीडबैक है, अशोक कुमार लिखते हैं कि फिल्म नाम का शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। मोहन निवारे जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि ये आवाज़ बहुत ही प्यारी है और गाना भी बहुत अच्छा लगा है। नाहिद जी लिखते हैं कि सो लवली चॉइस है, ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि तेरे दिल की तू जाने में अपने दिल की जाने, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में लाजवाब गाना सुनने को मिला है, धन्यवाद देते हैं। और इसी का ओके अगला जो डिमांड है आर्यन राज जी का है, मैं सुनवा रहा हूँ। आर्यन राज जी इंजॉय कीजिए अपने गानों को। आर्यन राज जी, मैंने तुझे मांगा,

वेलकम बैक। वो माय गॉड, मैं तो गाने में ही लग गया था। कोई बात नहीं, फिलहाल फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ। और यहाँ पे सुनील पवार जी लिखते हैं कि तू मेहनत कर, फल की फिक्र ना कर, और मुश्किलों से डर कर, यूं आह ना भर, और तेरा यार खड़ा है तेरे पीछे हरदम, तू आंखें मूंद अपनी राह पर चल। जी बिल्कुल सही कहा, ये मोटिवेशनल शायरी है आपका। और यहाँ पे अगला जो बी के पंत जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और बबीता जी लिखते हैं कि सुपरहिट गाने और सभी दोस्तों का पसंद एक से बढ़कर चल रहे हैं। नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइस है आर्यन राज जी के, थैंक यू सो मच आर्यन राज जी। और शमशाद हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमर भाई जान, वालेकुम सलाम, आप खैर हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं खैर हूं। लिखते हैं कि यानी तेरे बिना अब एक पल भी गुजरता नहीं, लिखते हैं कि तेरे बिना एक पल भी गुजरता नहीं, ये दिल तुम्हारे सिवा किसी और पर मरता नहीं, मेरी हर सुबह वो शाम सिर्फ जिक्र है तुम्हारा, मेरी हर सुबह शाम में सिर्फ जिक्र है तुम्हारा, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई ख्वाब नहीं लगता है, और सच कहूँ तो तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत लगता नहीं। जी बिल्कुल, जो दिल के करीब होता है ना वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। नंदलाल जी लिखते हैं कि आर्यन राज जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और मोहन वाल लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। अशोक कुमार लिखते हैं कि ये किशोर कुमार और लता भोसले आशा भोसले की आवाज़ में शानदार गाना सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि आर्यन राज जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और सरिता सिन्हा लिखते हैं कि दीवार फिल्म का शानदार गाना, जी दीवार का ही है। राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड, इस डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ किन का, ये सुनील कुमार जी हैं शायद, सुनील एक मिनट ज़रा देखना पड़ेगा, सॉरी आरजे सोनी जी का मैं पहले प्ले करता हूँ, आरजे सोनी जी के बाद ही मैं सुनील जी का प्ले करूँगा। आरजे सोनी जी इंजॉय कीजिए,

वेलकम बैक। सच में गाना बहुत अच्छा लगा है गीता दत्त की आवाज में। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे हैं। बीके पंजी लिखते हैं, सर जी लाजवाब पसंद है आरजे सोनी जी का। जी बिल्कुल। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि गीता दत्त की आवाज में सुपर सुपर सुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड, आज गाने की बरसात हो रही है। और ये फिल्म भी भाई फिल्म लाजवाब भी फरमाइश बेहतरीन ओल्ड इज गोल्ड के लिए, ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। जी बिल्कुल। और मोहन वाले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है आरजे सोनी जी आपका। और गजानंद जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद बेहतरीन लाजवाब ओल्ड इज गोल्ड सुनकर दिल खुश हो गया है। ओके जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड सुपर डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि दिल के जख्मों पर मुस्कुराना सीख लिया, लिखते हैं कि दिल के जख्मों पर मुस्कुराना सीख लिया, दर्द छुपाकर दुनिया को हंसाना सीख लिया, अब कोई क्या तोड़ेगा इस जख्मी दिल को, अब कोई क्या तोड़ेगा इस जख्मी दिल को, हमने तो हर दर्द में जीना सीख लिया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मज़ा आ गया। इन्होंने बहुत मज़ा आ गया, इन्होंने लिखा भी है। वैसे यहाँ पर अशोक कुमार लिखते हैं कि 1956 के पैदान नंबर 5 पर फिल्म भाई भाई का ये गीत गाया था सर गीता दत्त की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन के संगीत, मज़ा आ गया इस गाने को सुनकर। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, श्यामा पर फिल्माया हुआ ये गीत। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, ये क्या नाम है इनका, सुनील कुमार जी बांका बिहार वाले हैं, ये सुनना चाहते हैं क्या, जरा सा देखना पड़ेगा मुझे। सुनील कुमार जी बांका बिहार वाले, हाँ ये सुनना चाहते हैं, कोई शायर कोई पागल बन जाए। बिल्कुल भाई, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक फिर भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं हमारे को सलाम गांधीनगर गुजरात से और सर भगत जी क्या कहते हैं
1: और जय मान सर जी सुनील कुमार जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर
0: ओके वेलकम जी और आरजे आकांक्षा जी का शो रात 10 बजे सुनना ना भूले जरूर सुने आरजे आकांक्षा जी का शो और उनका हौसला अफजाई जरूर करें वबीरा जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी और जी आपका गाना पहुंचा हुआ है टेंशन मत लीजिए प्ले करूंगा नंदलाल जी लिखते हैं कि ये सुनील कुमार जी का लाजवाब गाना धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी और अशोक कुमार लिखते हैं कि भाई सुनील जी की पसंद बेहतरीन लगी है मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये गाना जी फिल्म का नाम है खतरों का खिलाड़ी गजानंद जी लिखते हैं कि सुनील कुमार जी के पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी मोहन भाई लिखते हैं कि सुपर प्रोग्राम के लिए धन्यवाद और ये क्या कहते हैं
2: अमन भैया नमस्कार मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दोस्तों का शुक्रिया फीडबैक देने के लिए
0: वेलकम जी आपका भी और एसके जसवाल जी लिखते हैं कि अमन जी क्या गजब का गीत है जी बिल्कुल और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि लाजवाब इस गाने के लिए धन्यवाद देते हैं शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत से ही तो मुझे मिलती है ये जिंदगी लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत से ही तो मिली है ये जिंदगी और हर सांस में बस तेरा ही नाम लिया करता हूँ तू दूर रहे या पास क्या फर्क पड़ता है रब से सिर्फ तेरी ही खुशी मांगा करता हूँ आह क्या बात है इसी बात पर अगला जो डिमांड में मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे शाहिद अंसारी जी का है शाहिद अंसारी जी इंजॉय कीजिए इस गाने को सभी दोस्तों को डेडिकेट कर रहे हैं

0: वेलकम बैक, बंद कमरे में और फीडबैक आया हुआ है। बंद कमरे में मतलब रेडियो
1: आरजे अमन सर जी, साहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे मोहन वाले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और ये क्या कहते हैं
2: अमन भैया, ये गाना फिल्म दोस्ती दुश्मनी का, इठलाए कमर बंद कमरे में, और ये SP बाला सुब्रमण्यम और S जानकी की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति और पसंद, दिल से धन्यवाद है।
0: ओके, बहुत बहुत वेलकम है आपकी जानकारी के लिए। मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह, शानदार फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच शाहिद अंसारी जी। और क्या नाम है इनका, नंदलाल यादव जी लिखते हैं कि SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में और S जानकी की आवाज़ में गाना बहुत अच्छा लगा। ओके, और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। अशोक कुमार लिखते हैं कि बंद कमरे में गाना पहली बार सुन रहा हूँ, SP बाला सुब्रमण्यम की बेहतरीन आवाज़ में मज़ा आ गया सुन के। और अर्षद जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या सॉन्ग है, अब मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। अच्छा, सच में कहा, हंसते रहिए भाई, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ बंद कमरे में मतलब मतलब रेडियो हॉटस्टार पे, वो गाना है हमारे किन का देखता हूँ मैं। ओके, हमारे SK यानी क्या नाम है इनका, शेख मोहम्मद यानी कि ताहिर जी, शेख मोहम्मद यानी कि ताहिर जी ये गाना सुनना चाहते हैं, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। इंजॉय कीजिए, बहुत प्यारा गाना है।

0: बिल्कुल सजना सजना सजना। और मोहन वाली लिखते हैं सुपर हिट गाना, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और अशोक कुमार लिखते हैं कि ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, बेहतरीन गाना सुनने को मिला, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और शाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। दोस्तों का भी शुक्रिया गाने पर फीडबैक देने के लिए। मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और बी के पंच लिखते हैं कि सर जी बहुत ही बेहतरीन पसंद है जी बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ले तो आए हो हमें सपनों गाँव में, ऑसम डिमांड है जी बिल्कुल। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से। अभी जो ये गाना चल रहा है फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाई, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन और हेमलता की सुमधुर आवाज में बहुत ही अच्छा गाना,
0: बिल्कुल
1: फरमाइशकर्ता को दिल से धन्यवाद है
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है जानकारी देने के लिए। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है और इस गाने सुनकर दिल खुश हो गया, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानन सुलकार जी की ओर से, अच्छा उनको नमस्कार करें, मतलब बाबूलाल अंजाना जी आपको नमस्कार कर रहे हैं गजानन सुलकार जी, इनके नमस्कार को कबूल कर लीजिए। और हमारे शाहनवाज खान लिखते हैं कि हेमलता की आवाज़ में बहुत ही मीठा और दिल को छू लेने वाली ये डिमांड है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो डिमांड संध्या पटेल जी का है, सुनना चाहती हैं, अब आ गई हैं तो डिमांड कर रही है मुझे 9 लाख मंगा दीजिए। अच्छा मंगा रहे, एंजॉय कीजिए इस गाने।

0: वेलकम बैक रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और मुहाने वाले लिखते हैं कि मुझे 9 लाख मंगा दे रहे। मजा आ गया इस गाने को सुनकर। धन्यवाद देते हैं संध्या पटेल जी को और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त बाबूलाल अजाना जी को भी नमस्कार, शुभ संध्या एंड थैंक यू सो मच। और सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है और शुभ संध्या है। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1984 के पैदान नंबर 7 पर बजा था ये गीत अनजान के बोल और बप्पी लहरी के संगीत में किशोर कुमार और आशा भोसले ने शराबी फिल्म में क्या गाया था, झूम के मजा आ गया सच में। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है सच में। और सहिता सिन्हा लिखते हैं कि ये शराबी फिल्म का गाना बहुत ही प्यारा लगा है। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि शराबी फिल्म का गाना मुझे 9 लाख मंगा दे रहे। जया पर्दा और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ गाना बहुत अच्छा लगा है। साथ ही साथ बीके पंजी लिखते हैं सर जी मुझे 9 लाख मंगा दे रहे, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि ये पुराने जमाने में 9 लाख का हार बहुत मायने रखता था, लेकिन आज आप 9 लाख का हार बनाएंगे वो भी 50-60 हज़ार का ग्राम का ही होगा। अच्छा ये बात है कोई बात नहीं है। आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी सभी गाने एकदम बढ़कर एक चल रहे, मजा आ गया गाना सुनकर सच में। और रवि जी लिखते हैं कि मोहब्बत में नशा तेरे इंतजार का है, लिखते हैं मोहब्बत में नशा तेरे इंतजार का है, इस दिल में नशा तेरे दीदार का है। ना होश में ला मुझे मदहोश ही रहने दे, ना होश में ला मुझे मदहोश ही रहने दे, मेरे इन नैनों में नशा तो तेरे प्यार का है। स्पेशल फॉर किरण। ओके जी ठीक है। और यहाँ पे फुलावर संजू भाव क्या कहते सुन लेते हैं।
1: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी मैं फुले भक्त संजू भाऊ। अब तक चले फरमाइश में जैसे कि अभी फरमाइश चल रही है हमारी छोटी बहन संध्या पटेल जी, इनके फरमाइश के पहले शेख मोहम्मद ताहिर जी, उनके फरमाइश के पहले शहीद अंसारी जी, उनके फरमाइश के पहले सुनील कुमार जो बांका बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके फरमाइश के पहले आरजे सोनी जी, उनके फरमाइश के पहले आर्यन राज जी, उनके फरमाइश के पहले सुनील कुमार जी, उनके फरमाइश के पहले प्रमोद कुमार जी, उनके फरमाइश के पहले राजेश कुमार जी, उनके फरमाइश के पहले एस के जसवाल जी और इनके साथ एक श्रोता बंधु थे दोनों की मिलीजुल फरमाइश, उनके पहले जाकिर खान जी, उनके पहले असलम राणा जी जो हट के गीत लाते हैं, उनके पहले विके पंत जी, उनके पहले सर्वजीत शेट्टी जी, उनके पहले मीना कुमारी जी, उनके पहले मेरी छोटी और प्यारी बहन काजल चक्का जी, उनके पहले अभिषेक तिवारी जी, उनके पहले MD मिराज जी और आपका ओपनिंग गीत। अमन सर जी अब तक इतने गीत चले हैं सर और सभी गीत सुपर और सुपर से ऊपर रहे। मैं धन्यवाद बोलूँगा आपको इतना अच्छा कार्यक्रम सजाने के लिए और इतना अच्छा अनोखे अंदाज में आप कार्यक्रम सजाते हो। और सभी श्रोताओं को मैं दिल से शुक्रिया और धन्यवाद बोलूँगा इतना अच्छा फरमाइश में गीत भेजने के लिए। आज का कार्यक्रम भी आप हमेशा की तरह सुपर और सुपर से ऊपर सजा रहे हो सर, मज़ा आ रहा है कार्यक्रम बिल्कुल रेडबुल हो रहा है, ललन टॉप हो रहा है। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, इसका क्या कहना सर, हर सोमवार तो इतना अच्छा कार्यक्रम होता है क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड गीत सर अभी भी अपने दिल पर राज करते हैं और सभी श्रोताओं की जो फरमाइश है चुन चुन के लाते हैं सर, मतलब कि मज़ा आ जाता है। आज का कार्यक्रम एकदम काबिले तारीफ हो रहा है, सभी को धन्यवाद और आपको धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम सजाया। और सभी जो पार्टिसिपेट करते हैं फीडबैक देते हैं और अमन सर जी आप जो फरमाइश के माध्यम मतलब कि आप कार्यक्रम में जो चार चांद लगाते हो शायरी की तरह, किसी श्रोता ने अगर शायरी भेजी है आप उसका जवाब तुरंत दे देते हो सर, पता नहीं आपको कैसे सोचता है सर, आप भी शायर होने वाले हैं मुझे ऐसा लगता है प्यार के मामले में। और मैं फुले भक्त संजू भाऊ रेडियो ओटर स्टार जो दीवाना बना दे आर्जे अमन जी के साथ, थैंक यू
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच संध्या पटेल जी। और हमें प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। और रवि मोहरा जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट गाना मुझे 9 लाख मंगा दे रहे। अजय कुछ जी लिखते हैं कि सुपर हिट गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है आरती तिवारी जी सुनना चाहती हैं चांद जैसे मुखरे पे बिंदिया सितारा, इंजॉय द ट्रैक।

0: और लगता है कि फिर किसी की नजर लग गई हो। माय गॉड, उस समय से नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा था और अभी लगातार कितना बार कनेक्ट, मतलब डिस्कनेक्ट हुआ इस गाने में। गजानन जी के दोस्त फूले बाग संजू भाव जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। और विज्ञापन जी लिखते हैं कि चांद जैसे घूमने पे बिंदिया सितारा गाना अच्छा लगा है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि फूले बाग संजू भाव जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। ओके जी, इसी बात पगला लग रहा है कि पूरा कट रहा है, मतलब जो लोग रेडियो गाना पर सुन रहे हैं उनको तो सही सुनाई दे रहा होगा, जो लोग रेडियो गाना पर सुन रहे हो उनको सिर्फ सुनाई देता होगा क्योंकि रेडियो हॉटस्टार पर बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है। अगर रेडियो गाना पर सुन रहे हैं तो आप जल्दी से स्विच कर लीजिए, सॉरी रेडियो हॉटस्टार पर सुन रहे हैं तो जल्दी से स्विच कर लीजिए रेडियो गाना पर, क्योंकि वहाँ पर डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर बिल्कुल आपको सही से सुनने को मिलेगा। ओके, इसी बात पगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, चलिए दो दोस्तों का मैं प्ले करता हूँ। पहले तो अच्छा फीडबैक आया हुआ है कुछ यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद मीना जी फिर से दोबारा आ गई हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि इंटरनेट अमन सर जी बहुत परेशान कर रहा है जी, बिल्कुल दो तीन गाने बज गए होंगे मुझे पता है। और प्रकाश जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल। और हमारे आनंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आनंद जी। और शिल्पा बेन जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। तो अब अगला जो डिमांड है हमारे फूले बाग संजू भाव जी और गजानन जी का ग्रुप का है, तो सुनवाते हैं आपको ये पसंद।
1: रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार। अमन सर जी कैसन बानी?
0: बहुत ही बढ़िया बानी।
1: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ बोदवल महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है सोमवार और आज की अपनी थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, और आज के कार्यक्रम में सभी ओल्ड इज गोल्ड गीत चलने वाले हैं सर। तो हमने भी एक ओल्ड इज गोल्ड सदाबहार गीत लाया है सर, फिल्म का नाम है फर्ज, और इसी फिल्म का एक सदाबहार गीत है सर जिसे आवाज़ें दी है स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब जी इन्होंने, और गीत के बोल सर इस प्रकार है। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे कली के साये से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। अच्छा। अमन सर जी आप ये गीत सुना दीजिए और डेडिकेशन में याद करूंगा सर सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू,
1: वेलकम अमन सर जी, बाद में आपकी सुंदरता की मुहूर्त इनको भी ये गीत में डेडिकेट करूंगा सर।
0: थैंक यू सो मच, उनके लिए भी
1: धन्यवाद सर उनके लिए। और बाद में चुलबुली आवाज के मलिका मेरी छोटी और प्यारे बहन आरजे वंशिका जी, आदरणीय आरजे परमार जी, और रेडियो स्टार सुन रहा मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो स्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ, मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: और गजानन जी का ग्रुप इसमें पूरा शामिल है, एंजॉय द ट्रैक।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे रेडियो हॉटस्टार का जो यानी यहाँ पे सर्वर है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम किससे भी हो रहा है, लेकिन रेडियो गाना का जो सर्वर है बिल्कुल सही काम कर रहा है। उसके लिए आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, क्योंकि बहुत से दोस्त नाराज़ भी हो रहे हैं क्योंकि एक गाना सही से सुन नहीं पा रहे हैं। एक गाने में अनेकों गाने उनको सुनने को मिल रहे हैं, अभी कुछ और गाना, फिर कुछ और गाना, हर सेकेंडों में गाने चेंज हो, क्योंकि जितने बार यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है उतने बार गाने चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वर से सीधे कनेक्ट होता है। जैसे ही वो गाना अपने आप को कनेक्ट करता है तब तक सर्वर छोड़ देता है, और सर्वर छोड़ता है तो फिर अगला गाना आता है। फिर इस तरह से करते करते ये डिस्टर्बेंस आई हुई है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें बेहद खेद है। प्लीज़ आप लोग नाराज़ ना हो, और जो भी दोस्त सुन रहे हैं उसी के जस्ट इस बगल में है रेडियो गाना, उस यानी कि टैब पर क्लिक करके वहाँ सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल सही सही सुनने को मिलेगा, आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, धन्यवाद देते हैं, और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं, और आप सुनने रेडियो गाना पर ही अभी सभी दोस्तों से मैं रिकमेंड करूंगा यही। अगर आरजे आकांक्षा जी का शो होता है और देखते हैं उस समय क्या होता है, मुझे लग रहा है कि उनका भी शो में डिस्टर्बेंस होने वाला है। कोशिश करता हूं कि उनको मैं रेडियो गाना पर ही उनको आज शिफ्ट करके प्रोग्राम करवाने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि फिलहाल रेडियो हॉटस्टार पे प्रोग्राम बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, रणवीर सिंह जी लिखते हैं, जेठालाल जी, कि ये सावन को आने दो का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, बहुत ही बेहतरीन गाना था। और काजल झक्का जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजू है कि वफा बन के तेरे साथ रहूं, आरजू है कि वफा बन के तेरे साथ रहूं, धड़कते दिन की सदा बन के तेरे साथ रहूं, धड़कते दिन की सदा बन के तेरे साथ रहूं, मेरे होठों से जिसे कोई छीन ना सके, मेरे होठों से जिसे कोई छीन ना सके, वो दुआ बन के जिंदगी भर तेरे साथ रहूं, वो दुआ बन के जिंदगी भर तेरे साथ रहूं। सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, काफ़ी अच्छे गाने सब बज रहे हैं, सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और सर जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा। तो मैं काजल सीतामढ़ी से आज का प्रोग्राम बोले तो
0: ओके, लेकिन मैं कहूँगा कि तुझे चाहना मेरी आदत बन गई, कि तुझे चाहना मेरी आदत बन गई, और तेरी हर और तेरी हंसी मेरी राहत बन गई, अब तो हर दुआ में बस तू ही तू है, अब तो हर दुआ में बस तू ही तू है, मेरी मोहब्बत तेरी इबादत बन गई, मेरी मोहब्बत तेरी इबादत बन गई। और भी फीडबैक है मेरे पास, अजय कुछ लिखते हैं कि मैं तो हमेशा ही रेडियो गाना पर ही सुनता हूँ क्योंकि सही चलता है, बिल्कुल ओके, हाँ धन्यवाद देता हूँ आपको। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है। और बी के पंजी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश चल रहा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ये क्या कहते हैं,
2: अरजे अमन सर जी, गजाना सोलोकर जी और फूले बख्श संजू भाव जी, पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि हर सुबह तेरी याद से शुरू होती है, मेरी हर खुशी अब तुमसे पूरी होती है, और तेरा जिक्र भी हो जाए तो दिन बन जाता है, और तू साथ ना हो तो हर पल अधूरा लगता है। ओहो क्या बात है, तो मैं तो यही कहूँगा कि दिल की हर धड़कन में तेरा नाम लिखती है, दिल की हर धड़कन तेरा नाम लिखती है, मेरी हर सांस तेरा इंतज़ार करती है, तू ना मिले तो ना मिले वो किस्मत की बात है, मेरी मोहब्बत तो तुझसे ही प्यार करती है। और अनंत जी लिखते हैं कि ओके ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डिमांड था, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। आरती तिवारी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि रेडियो गाना का सर्वर बिल्कुल सही काम कर रहा है, और मैं रेडियो गाना ही सुन रहा हूँ, और बहुत अच्छी फरमाइश भी है, लाजवाब, ओल्ड इज गोल्ड, मस्त बहार। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मीना इब्राहिम जी की है, और मीना इब्राहिम जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा डिमांड, और बदन पे सितारे लपेटे।

0: हुए ओ जान तमन्ना।
1: वेलकम बैक। और यहाँ पे फिर बहुत सारे हुए, बहुत सारे बाबूलाल जी जीते गए हमारे दोस्त गजानन जी की जो डिमांड थी बहुत ही प्यारी थी, धन्यवाद देते हैं उनको। और धन्यवाद संजय भाव लिखते हैं कि दिल से धन्यवाद फरमाइश को प्ले करने के लिए। और यहाँ पे रवि मोहड़े जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गाने के डिमांड के लिए हमारे गजानन सलोकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच आपका। और अजय कुछ लिखते हैं कि सभी गाना बहुत ही सदाबहार है, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। मीना जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ।

0: हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अमन सर
1: जी जी।
0: प्रिंस मूवी का सुपर सॉन्ग है
1: जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। आर्य सिंधी जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी, रेडियो गाना पर सुनने की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो दोनों जगह प्रोग्राम आता है, रेडियो हॉट स्टार पर भी आता है और रेडियो गाना पर भी आता है इसलिए। और शानवाज जी लिखते हैं कि बदन पे सितारे लपेटे हुए, एक और ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनने को मिला है। मीना इब्राहिम जी के पसंद ओल्ड इज गोल्ड, जिंदाबाद। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1969 के पैदान नंबर 11 पर फिल्म इन प्रिंस का लाजवाब गाना, हसरत जयपुरी और शंकर जय किशन और रफ़ी की ये तगड़ी साथ में मजा आया था। ओके, और क्या नाम है इनका, राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि सुपर हिट डिमांड है, सुनकर दिल खुश हो गया है। और गजानन जी लिखते हैं कि रेडियो गाना का सर्वर अच्छा है और दोस्त रेडियो गाना सुनो जी, बिल्कुल सुन रहे हैं फिलहाल। और सहिदा सिन्हा लिखते हैं कि रफ़ी की आवाज़ में बहुत लाजवाब गीत है। और वी के पंच जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट डिमांड है जी, बिल्कुल। और रवि मुखर्जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा लाजवाब, गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ शाहनवाज खान जी का। शाहनवाज खान जी क्या सुनना चाहते हैं, सुनते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले जितने भी नए लोग रेडियो हॉटस्टार से जुड़े हैं, मैं अमन सर की तरफ से सबका वेलकम करता हूं। मैं शाहनवाज खान हैदराबाद से। अमन सर आज इस प्रोग्राम में मुझे एक गाना सुनना है, गाने का लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। ये गाना सबसे पहले हम सबके चहेते हरफन मौला, हर दिल अजीज, सुंदरता की मूरत के आशिक आरजे अमन सर जी आपको डेडिकेट है।
1: थैंक यू सो मच।
2: इनके बाद इस गाने में शामिल हैं पल्लवी जी ऑस्ट्रेलिया से, इंतेशाब जी लंदन से, शमा जी, पुष्पा चौधरी जी, नंदनी तिवारी जी, आरती वर्मा जी, प्रिया मिश्रा जी, सरिता सिंह जी, पूजा भास्कर जी, पूजा कुमारी जी, काजल जक्कास जी, संगीता अम्बुलकर जी, अरुणा जी, ज्योति खटवटे जी, बबीता जी, शालिनी त्यागी जी, डिंपल वर्मा जी, आरती तिवारी जी, आरजे रुबीना मलिक जी, शिखा मिश्रा जी, आवाज की मल्लिका आरजे रत्ना जी, मनीषा कुलकर्णी जी, आरजे सोनिका और आरजे रजनी जी, असलम राणा जी, सर्वेश भगत जी, अशोक कुमार और अशोक देशमुख जी, आजाद अंसारी जी, नागेश्वर धाकर जी, अजय कुश जी, रामकेश जी, नेत्रपाल जी, गुलबास जी, सतीश शर्मा जी, प्रोग्राम रिपोर्टर संजू भाव जी, मोहम्मद अता जी, अमोल कांबले जी, हिरामन खिलाड़े जी, प्रमोद बगारे जी, प्रमोद कुमार जी, शेखर केलर जी, मेराजुल हक जी, सैयद यूनुस जी, मिनेश पटेल जी, रवि राणा जी, रवि मोहारे जी, जितेंद्र खरवार जी, दीपक सिंह जी, अंचल कुमार जी, आत्माराम पाटिल जी, संतोष एस काले जी, गजानन सालोकार जी, दत्ता कदम जी, बाला साहेब सोलंकर जी, सुरेश बिसे पाटिल जी, समाधान कदम जी, उपेंद्र यादव जी, एमडी महमूद आलम जी, पंडित धर जोड़े जी, अनंत कुलकर्णी जी, सरफराज जी, जाकिर मुलानी जी, दशरथ सागुते जी, सोनू जी, धर्मेंद्र वर्मा जी, दिलवा आलम जी, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम साहब, राकेश पान भंडार फैजाबाद वाले, रविंद्र शानू जी, कुबेर मस्के जी, इलियास कुरैशी जी, अयूब हसन जी, इशाक हुसैन जी, शमशाद हुसैन जी, मेराज जी, रेहान जी, यूसुफ हुसैन जी, एम डी फैज आलम जी, एम डी नाजिम जी, दिलशाद जी, अहद और डीएन मोहम्मद जी, योगेश जी, रामविलास चौधरी जी, ब्रजेश कुमार जी, सुमित जी, राजकुमार जी, पी एस नहावकर जी और जितने भी लोग हिंदुस्तान या दुनिया के किसी कोने से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को अपने इस गाने में शामिल करता हूँ।

0: आज तो सभी दोस्तों की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं सभी को। और ये फीडबैक
1: रब करे कि हमारा प्यार इतना सच्चा हो, रब करे कि हमारा प्यार इतना सच्चा हो कि तू रहे किसी के साथ भी, तू रहे किसी के साथ भी, पर तुझे याद मेरी ही आए, पर तुझे याद मेरी ही आए। बहुत अच्छे अच्छे गाने, काफ़ी अच्छे। सहनवाज सर जी, आपका गाना भी बहुत अच्छा, और थैंक यू, आपने मुझे भी अपने गाने में याद किए, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, काजंग सीतामढ़ी बिहार से।
0: ओके, धन्यवाद। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तेरी यादों में हर शाम गुजर जाती है, मैं तो कहूँगा कि तेरी यादों में हर शाम गुजर जाती है, और तेरी बातों में हर रात संवर जाती है। और कैसे कहूँ इतना चाहता हूँ तुझे, और कैसे कहूँ कि मैं कितना चाहता हूँ तुझे, मेरी हर धड़कन तेरा नाम दोहराती है। क्योंकि रिश्ता ऐसा है कि मिसाल बन जाए, रिश्ता ऐसा हो कि मिसाल बन जाए, और हर खुशी तेरे नाम हो जाए, और रहे साथ हमारा उम्र भर यूं ही, रहे साथ हमारा यूं उम्र भर यूं ही, हमारा प्यार आपके लिए कमाल बन जाए। वैसे फीडबैक बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: यमन सर जी, शहनवाज खान सर जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: वेलकम जी आपका भी। और अशोक कुमार लिखते हैं कि शहनवाज खान जी की पसंद बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: वेरी गुड इवनिंग आर जय अमन, एंड वेरी गुड इवनिंग खुशबू कुमारी जी, वेरी गुड इवनिंग माय डियर, हाउ आर यू?
0: Fine. And what about you? Okay जी, तो बस इतना ही था आपका फीडबैक, मुझे लगा कुछ और कह रहे होंगे। ओके, और बाबूलाल जी लिखते हैं शहनवाज जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया शानदार डिमांड के लिए। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि उसे भुलाया नहीं जा सकता जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हो, ये दिल हर पल तेरा नाम जपता है, बस तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहता है। लफ्जों में बयां करूं अपनी मोहब्बत नहीं, दिल की गहराई देखो, वहां बस तुम ही तुम। आए हाय, क्या बात है, अब तो मुझे भी कुछ लगना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि यानी कि तेरे बिना ये अधूरी सी लगती है जिंदगी, कि तेरे बिना अधूरी सी लगती है जिंदगी, और तेरे साथ हर पल हसीन लगता है। मोहब्बत का मतलब अब समझ आया, मोहब्बत का मतलब अब समझ आया, जब से तू मेरे करीब रहती है, जब से मेरे तू करीब रहती है। और वैसे फीडबैक और भी है, सीता सिन्हा लिखती हैं कि ये गाना बहुत ही शानदार लगा। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय शहनवाज जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने में शामिल करने के लिए। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
4: आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी अपने पसंद में मेरा नाम लेने के लिए। वैसे आपका गाना गोल्डन हिट, एकदम ज़बरदस्त, मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एमडी फैज आलम, मोहिद्दीन नगर, समस्तीपुर से।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और बबीता जी क्या कहती हैं, सुन लेते हैं।
5: नमस्ते भाई साहब, आपने एक सांस पे सब पूरा डिपार्ट का नाम लिया, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे दोस्त को याद रखते हो, बहुत अच्छा लगा सुन के, और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सारे दोस्त के याद किए।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। और साथ ही साथ बी के पंत जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड बेहतरीन पसंद लगी है। और राधा कृष्ण गोल्ड लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत नगमे के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
6: संगीत की दुनिया के दोस्तों को आनंद का प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आनंद, यूट्यूब चैनल एनालिटिकल आनंद से आप सभी के लिए एक सूचना लेकर आया हूँ कि अमेजन पे अभी टूनस के कुछ रेडियो के कीमत में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इनमें से दो रेडियो मैंने मंगवाए हैं, यूज़ कर रहा हूँ, और वो काफ़ी अच्छे रेडियो हैं, J03, J136। कुछ दिनों के बाद इन दोनों रेडियो का रिव्यू भी मेरे चैनल पे आ जाएगा। J03 मात्र 1296 रुपये में उपलब्ध है, और J136 की कीमत मात्र 999 रुपये है। आप सभी रेडियो प्रेमी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और कम कीमत पर एक अच्छी रेडियो पा सकते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद। दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये भी बता देते तो और अच्छा होता। निकला जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच इस बात पर। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ

0: वो जैसा देख लेता हूँ मैं, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, दो दोस्तों की डिमांड है, नहीं सॉरी, तीन दोस्तों की, आत्माराम जी, सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी और सैयद यूनुस जी। ओ माय गॉड, यानी कि चार दोस्त हैं इसमें, सॉरी। तो चार दोस्त हैं, तो सबसे पहले हम अशोक देशमुख जी के हैं और ऑडियो को शामिल करता हूँ मैं।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख
0: जी। वेलकम जी।
1: आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है जानवर और गाने का बोल है लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे जी। और इसी गाने में जैसे कि शामिल हो रहे हैं हमारे सर्वेश भगत जी, सुनते हैं इनके ऑडियो को।
2: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है जानवर और गाने का बोल है लाल छड़ी मैदान खड़ी, वो खूब लड़ी वो खूब लड़ी। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंज जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारे परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, परकिशोर भगत, आनंद शेखर, कुमार, सुनील कुमार, मुनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी और आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, आपका सुंदर सुंदरता की मूरत जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुना दीजिएगा। जय राम जी। अमन सर
0: जी,
3: अस्सलाम वालेकुम। आर जे अमन सर जी, मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, उसी मौके पर एक गीत लेकर आया था सर जी मैं। फिल्म का नाम है जानवर और गीत के बोले लाल चढ़ी मैदान कड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, ये गीत की बोली सर जी। और ये गीत मैं मेरे खास को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो
0: आत्माराम पाटिल जी।

0: देखते। हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और इस बार नेटवर्क ने धोखा दिया था मेरा, यानी कि सर्वर ने धोखा नहीं दिया था। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम है नेटवर्क का। नेटवर्क जो अभी यहाँ चल रहा है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। शायद बारिश की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से हो सकता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, मैंने कंप्लेन किया था, उसका रिपोर्ट ये आया हुआ है कि आपके सर्वर में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर सर्वर में प्रॉब्लम होता तो जो यानी 24 घंटे गाने प्ले होते हैं वो नहीं प्ले होते, उसमें आती है, उसमें मतलब यानी कि प्रॉब्लम आती है, उसमें प्रॉब्लम आते नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो जब मैं लाइव शो करता हूँ वो तब आते हैं। तो लाइव शो करते समय चूँकि रेडियो हॉट स्टार के मतलब यानी कि सर्वर पर लिस्नर की संख्या ज़्यादा होती है, रेडियो गाने के सर्वर पर लिस्नर की संख्या यानी कम होती है, इसलिए वो मतलब वो कंटिन्यू कनेक्टेड रहता है और वहाँ पे ज़्यादा होने के कारण उसको मतलब उस पर जोर पड़ता है ना, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो पाता है। इसलिए ऐसा ये प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि यहाँ पर तो मैंने सब करके देख लिया। फिलहाल अभी नेटवर्क ही गायब हुआ था, सर्वर में प्रॉब्लम नहीं था। और आपको हुई असुविधा के लिए मुझे फिर खेद है। फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूं मैं। गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सर्वेश भगत जी और सैयद दोनों जी के वचन बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलीजुली डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और मीना जी लिखती हैं कि वाह वाह वाह क्या लाजवाब गाना है जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद, मुझे ये डिमांड अच्छी लगी है। ये सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: मित्रों, जैसा कि अमन जी ने ख्वाहिश जाहिर की कि इन दोनों रेडियो के बीच का डिफरेंस मैं बता देता, तो J136 थोड़ा छोटा रेडियो है, ये बिजली पे भी चलता है और 2 डीसेल के बैटरी पे भी चलता है। अच्छा। जबकि J03 बड़ा रेडियो है थोड़ा इससे, और उसके स्पीकर का साइज लगभग 90% अन्य रेडियो से, J03 से या और दूसरे जो रेडियो J25 आते हैं उनसे 90% बड़ा स्पीकर है, तो इसमें आपको लाउड साउंड मिलेगा। अच्छा। ये भी बिजली पे भी चलता है और 4 AA साइज के बैटरी पे भी चलता है। दोनों के ही परफॉर्मेंस काफी अच्छे हैं, रिसेप्शन काफी अच्छे हैं, बिजली पे भी और बैटरी पे भी। बैटरी पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर FM की रिसेप्शन मिलती है और साउंड मिलता है। थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बेहतरीन जानकारी दिया आनंद जी, और सच में आनंद आ गया। निकला जी लिखते हैं कि मिस्टर आरजे अमन, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। ये सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा 4 भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी और हम सभी का गाना आप शामिल अपने प्रोग्राम में शामिल कर दिए, थैंक यू, धन्यवाद।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ हमारे फैज जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
4: जबरदस्त ओल्ड इज गोल्ड गोल्डन हिट सुनवाने के लिए सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। MD फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अशोक कुमार लिखते हैं कि अशोक देशमुख सर जी के सारे हमारे मित्रगणों की पसंद सुनने में मिला, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अजय कुछ लिखते हैं कि जी ये डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि नेटवर्क ही यानी कि यहाँ पे कट गया था, इसलिए रेडियो गाना पर डाउन हुआ है, ना तो नहीं होता, रेडियो गाना पर डाउन होता ही नहीं। और यहाँ पे राधा कृष्ण को भी बहुत ही शानदार डिमांड था। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि अमन सर जी, मेरे सॉन्ग को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उन सभी दोस्तों का भी जिन्होंने मेरे गाने को पसंद किया और मुझे अपना स्पेशल फीडबैक दिया, और ख़ासकर उन सभी दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आवाज़ में फीडबैक दिया है। और जैसे कि हमारे सैयद उन्होंने जी आवाज़ में फरमाइश, इन सभी दोस्तों की लाजवाब लगी है, शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। ओके जी, फूलबाग से अमन जी भाव लिखते हैं, अमन जी हाँ जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि नेटवर्क से प्रॉब्लम हो सकता है, ओके कोई बात नहीं, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो शिल्पा बेन का ही करने वाला हूँ, और इंजॉय कीजिए इस गाने को, और ये गाना मुझे भी अच्छा लगता है इसलिए मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

और 9:30 बजे आरजे आकांक्षा जी के लिए यानी लाइनें खुल जाएंगी। आप अपनी डिमांड, अपनी मैसेजेस उनके पास भेज सकते हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम आएगा 10:00 बजे से। धन्यवाद, जरूर सुने।

वेलकम बैक। और यहाँ पे निकला जी लिखते हो, थैंक यू सो मच आर्यमन जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। यस, और मीना जी ने वाह क्या बात है, क्या लाजवाब गाना है, सच में मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे लिखती है यानी मीना कुमार जी, पगली मोहब्बत तो दिल देख कर की जाती है, फेस देख कर तो सेटिंग होती है। मोहब्बत वो रिश्ता है जो बिना बोले समझ आता है, और मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारा ठिकाना है और तुम्हारे साथ ही हर पल बिताना है। वाह क्या बात है, तो क्या मैं भी कुछ कह दूं क्या इसी बात पर? तो ठीक है, मैं तो यही कहूँगा तेरे साथ बिताया हर पल यादगार है, मैं कहूँगा कि तेरे साथ बिताया हर पल यादगार है, और तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी बहार है। और दुआ है कि तू कभी दूर ना हो ये रिश्ता, दुआ है कि कभी दूर ना हो यो ये रिश्ता, क्योंकि तू ही मेरा हर ख्वाब और हर साकार है। ओके जी, और इसी बात पर अगला जो फीडबैक है, गजानंद जी लिखते हैं कौन दिशा में लेके चला रहे बटैया वाला गाना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा डिमांड करने के लिए। और शौर्य सिंह जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, वेलकम है आपका भी। और लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार से बेहतर चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है? अच्छा, रेडियो गाना पर प्रोग्राम, जी बिल्कुल। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया वाला गाना, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ, और ये गाना है सुभाष तिवारी जी का, सुनना चाहते हैं भौरे ने खिलाया फूल, फूल इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: माय गॉड, यहाँ पे समय खत्म होने वाला है, मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया, मुझे 9:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना है। ओ माय गॉड,
1: खिलाया फूल फूल को ले गया राज।
0: इसके बाद मैं लास्ट गाना प्ले करूंगा बबीता जी का। और एक गाना और प्ले कर दूंगा, चलो दो गाने प्ले करता हूँ। ओके,

0: वेलकम बैक फीडबैक भी आया हुआ है, शामिल करता हूँ।
1: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग नदिया के पार फिल्म का, मज़ा आ गया। और मैंने भी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से एक सॉन्ग भेजा है सर जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये। हमारे आदरणीय शाह नवाब खान सर जी के जुड़ने के उपलक्ष्य में आज यही गाना दे रहा हूँ मैं, थोड़ा गुन।
0: ये तो मैं आपसे बता दूं कि वो गाना ऑलरेडी यानी कि पहले ही प्ले हो चुका है आप, और आपने देर कर दिया। और सुनने में बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुभाष जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इतना प्यारा डिमांड करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि भाई सुभाष जी की पसंद बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपहित अमेजिक पसंद भौरे ने खिलाया फूल फूल। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खुश होती है नगमा, थैंक यू सो मच। और मनोज कुमार लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ जी, बहुत बहुत वेलकम है मनोज कुमार जी। गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी आज का ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इसी बात पगला जो गाना आर के रवि जी ये सुनना चाहते हैं, मेरे महबूब क्यामत होगी, थोड़ा सा इनका भी गाना प्ले करता हूँ। और एक गाना लास्ट में प्ले करूंगा बबीता जी का, ओके एंजॉय द ट्रैक।

0: और अजय कुजिया, आज आपने कोई गाने की डिमांड नहीं किया था, देख लीजिएगा, जरूर आप चेक कर लीजिएगा। और आखिरी गाना मैं प्ले करने वाला हूँ बबीता जी का, बबीता जी।
1: नमस्ते मनसर जी, मैं ये गाना भेज रही हूँ, गाने के बोल हैं, धरी मिलन की आई आई चुपी लेके आ जा, प्यार की बीन बजे न अकेले आके साथ निभा। 1978 की है और महमूद जी का है, और इस गाने में आपको शामिल करती हूँ, और हमारे रेट में विचारी जितने भाई दोस्त जितने हैं सबको शामिल करती हूँ, सुनवा देना, धन्यवाद।

ओके, तो इसी गाने के साथ अब मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, और अभी रात के 10 बजे का प्रोग्राम आरजे अखांसा जी के साथ सुनना ना भूले। सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, और हो सकता है कि उनका प्रोग्राम अगर रेडियो हॉटस्टार पर नहीं आएगा तो रेडियो गाना पर जरूर आएगा। जरूर

0: अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तहार प्रजा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: हाँ दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद खड़ा करो। अब बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
2: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहा कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, का हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।

चुनो। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो,

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, नैना एक वादा है।
0: अच्छा
1: प्यार

0: करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ जी यार, अरे
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।